आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बुध को बातचीत की है। मोदी ने मशरक़ वुस्ता में बहरी जहाज़ों पर सवार अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने में तआवुन पर जोर दिया। उन्होंने ये बात कबल अज़ां रवां माह अम्मान के साहिल पर एक तजारती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद कही है। मज़कूरा हमले में अमले के 3 भारतीय अरकान हलाक हो गए थे। मोदी ने कहा कि आलमी समुंदरी तजारती रास्तों पर बहरी अमले के लाखों भारतीय कारकुन काम कर रहे हैं और उनकी हिफाजत हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उनके पास अमले के अरकान के गमजदा ख़ानदानों के लिए ताज़ियत के अल्फाज हैं। अमरीकी सदर ने ये कहते हुए जवाब दिया कि ये एक कठिन पेशा है। इसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा, ये हर वक्त होता रहा है लेकिन हम मिलकर काम करते हैं। भारत और अमरीका के ताल्लुकात तजारती मसाइल की वजह से भी पेचीदा हो चुके हैं। पिछले साल ट्रंप इंतज़ामिया ने भारत पर भारी महसूलात आयद किए थे, जिसकी जुजी वजह भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी थी। एटम बम हमलों से जिंदा बच जाने वाले जापानियों की तंजीम निहोन हिदानक्यो अगले साल ये फैसला करेगी कि इसे बरकरार रखा जाए या तहलील कर दिया जाए। बच जाने वाले इन लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है और ये सब उम्र रसीदा हो रहे हैं। इस ग्रुप ने सन 2024 में जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हुसूल की कोशिशों पर अमन का नोबल इनाम जीता था। टोक्यो में बुध और जुमेरात को

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे। गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। अमरीकी और ईरानी नेताओं के हस्ताक्षर के बाद संघर्ष समाप्ति से जुड़ा समझौता ज्ञापन प्रभावी हो गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी फिलहाल खत्म कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार अमरीकी सेना 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि हस्ताक्षर होने के बाद से 125 करोड़ बैरल तेल क्षेत्र से गुजर चुका है। उन्होंने कहा, ईरानियों ने लगातार दूसरी रात होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी जहाज पर गोलीबारी नहीं की। अब तक वे अपना किया वायदा निभाते आए हैं। नाकाबंदी के संबंध में सेंटकॉम ने 1 दर्जन से अधिक जहाज़ों को हमारी समुद्री नाकाबंदी से गुजरने की अनुमति दी है, इसलिए हम भी समझौते के शुरुआती हिस्से के अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का बयान प्रसारित किया। खामेनेई का कहना है कि शुरुआत में समझौते को लेकर उनकी राय अलग थी, लेकिन ईरानी जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। समझौते की कुछ शर्तें शायद पहले से ही खतरे में हैं। समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयां तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया है। हालांकि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बृहस्पतिवार को इजरायली ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए। अमरीकी ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना से जुड़ी अटकलों के चलते जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले करीब 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर तक लुढ़क गई। 17 जून को समाप्त हुई अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद डॉलर के मुकाबले येन की कीमत लगभग 161 पर पहुंच गई। बैठक के दौरान फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ नीति निर्धारकों का अनुमान था कि इस साल के भीतर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे इस धारणा को बल मिला कि जापान और अमेरिका की ब्याज दरों के बीच अंतर निकट भविष्य में कम होने की संभावना नहीं है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में येन की बिकवाली और डॉलर की लिवाली हुई। आखिरी बार जुलाई 2024 में येन की कीमत में इस स्तर तक गिरावट आई थी। एनएचके को पता चला है कि जापान सरकार वित्त वर्ष 2040 तक एआई और अन्य प्रमुख सामरिक क्षेत्रों में लगभग 3,700 खरब येन यानी $20 खरब से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकार की विकास रणनीति परिषद ये योजना तैयार कर रही है और इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की ओर से निवेश किया जाएगा। परिषद ने जापान की भावी आर्थिक सुरक्षा के लिए 17 अहम क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें एआई और सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण और अहम खनिज शामिल हैं। अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा। निवेश रणनीति को और विस्तृत रूप देने के लिए परिषद की बैठक अगले सप्ताह के शुरू में होने की उम्मीद है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। मोदी ने पश्चिम एशिया में जहाजों पर सवार चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग का आह्वान किया। उनकी ये टिप्पणी ओमान के निकट इसी महीने के शुरू में एक व्यावसायिक जहाज पर हुए अमरीकी हमले के बाद आई है, जिसमें भारतीय चालक दल के 3 सदस्य मारे गए थे। मोदी ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे चालक दल के सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे। इस पर अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, ये एक कठिन पेशा है, ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम सब मिलकर काम करते हैं। कारोबारी मुद्दों के कारण भी भारत और अमेरिका के बीच संबंध जटिल हो गए हैं। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल की खरीद के कारण भी भारत पर भारी शुल्क लगाए थे। जापान के अणु बम उत्तरजीवियों का समूह निहोन हिदांक्यो अगले साल ये निर्णय ले सकता है कि समूह को जारी रखा जाए या भंग कर दिया जाए। हिबाक्षा के नाम से जाने जाने वाले उत्तरजीवियों की काफी उम्र हो चली है।

0: परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस समूह को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो में बुधवार और बृहस्पतिवार को समूह की नियमित आम बैठक में समूह के भविष्य पर भी चर्चा हुई। सभा में एक प्रस्ताव ये रखा गया कि जो लोग हिबाक्षा नहीं हैं, जैसे उत्तरजीवियों के बच्चे और पोते पोतियां, उन्हें समूह जारी रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा प्रस्ताव ये था कि जब हिबाक्षा उच्च पदों पर सेवा करने में असमर्थ हो जाएं, तब समूह को भंग किया जाए। बैठक में समूह की क्षेत्रीय शाखाओं के भविष्य से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिरोशिमा और नागासाकी स्थित संगठनों को स्थायी नागरिक समूहों के रूप में बनाए रखना है, जबकि अन्य को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तय करने का अधिकार देना है कि वे अपना संचालन जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इन प्रस्तावों पर अगले 12 महीनों में चर्चा की जाएगी। अगले वर्ष की नियमित आम बैठक में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर जापान के हेयर सैलून गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए ग्राहकों के बाल ठंडे ठंडे शैम्पू से धो रहे हैं। यामागाता प्रीफेक्चर में लगभग 300 हेयर सैलूनों ने बृहस्पतिवार से ये सेवा प्रदान करनी शुरू की। ग्राहकों के बाल धोते समय फ्रिज में रखे मेंथॉल शैम्पू या बर्फीले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनुमा कोइची ने करीब 20 साल पहले इस ग्रीष्मकालीन सेवा की शुरुआत की थी। यामागाता शहर में उनकी दुकान ग्राहकों के अनुरोध पर उनके सिर पर कसी बर्फ छिड़कती है। ये सेवा 18 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। ओनुमा के अनुसार गर्मियों की ये खास सेवा देश विदेश से लोगों को आकर्षित कर रही है और वे इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शैम्पू लोगों को ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान काफी अधिक रहने की आशंका है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।